0: पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले
1: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
0: गावन रतन पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
1: गावे जोत महाबल सूरा गावे खाने चारे
0: गावे खंड मंडल पर पंडा करका रखे तारे
1: से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितन आवन नाने क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
0: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
1: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन पाई
0: कर कर वेखे कीता अपना जिव तिसदी वडियाई
1: ज्योतिष पावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई
0: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रचाई
1: मुंदा संतोख सरपत झोली ध्यान की करे बपूत
0: किंथा काल कुवारी काया जुगत गंडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
0: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश
1: भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अबरा साध
1: संयोग बिजोग द्विकार चलावे लिखे आवे भाग
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एक माई जुगत व्याई तिन चेले परवान
0: एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीवान
1: जेब तिस पावे तिवे चलावे जब होवे फरमान
0: ओ वेखे उना नदर ना आवे बहुता एहो बडान
1: आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एका वार
1: कर कर वेखे सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एक दू जीबो लख होवे लख होवे लख वीस
0: लख लगेड़ा आखिए एक नाम जगदीश
1: ये तरह पत पबड़िया चढ़िए होए अकीस
0: सुन गल्ला आकाश की कीटाई रीस
1: नानक नदरी पाईए कूड़े कूड़े ठीस
0: आखन जोर चुपे ना जोर जोर ना मंगन दे ना जोर
1: जोर ना जीवन मर ना जोर जोर ना राज माल मन सोर
0: जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार
1: जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोई
0: राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल
1: जिस बे धरती थाप रखी धर्म साल जिस बेच जी जोत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत
0: कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
1: जिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान
0: कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए
1: धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
0: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश
1: केते बरमे घाट घड़िए रूप राम के वेश
0: करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश
1: केते एंद चंद सूर केते केते मंडल देश
0: केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश
1: केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद
0: केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद
1: केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत
0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद
1: सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप
0: ताकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए
1: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़े सुरा सिद्धा की सुध
0: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर
1: जिथे जोध महाबल सूर तन में राम रहा पर

0: क्षान्त्वाय प्रसाद
1: सर्वंगन्तः सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिं सर्वं त्राणिं
1: सर्वं कर्मं सर्वं सर्वं योग्यता सर्वं मुक्ता
0: प्रसावल क्षान्त्वाय प्रसाद
1: अनाशि सदा प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अंगं विभूते
0: परमार्थं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
1: नाम मित्र भंगी तन काम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी।

0: साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
1: के राज करहिं दें करीम अल कमाल है कुसुल जमाल है
0: गनीम अल खराज है गरीब अल निवाज है हरीफ अल छिकान है हरासल फिकान है
1: बरनास समस्तल निवास संगंजन गनीम अल जाय करीम है
0: समस्तल जुबान है के साहिब करा है के नरकन पर नास है वैसल निवास है
1: सर्वगवान है सर्वान तमाम अल तिमीज है समस्तल अजीज है
0: परम परम ईस है समस्तल अधीस है अदेशल अलेख है
1: कमाल है की जरूरत जमाल है
0: की अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो बेभूत
1: है आत्म प्रभ है चलंग नांग के मितो अभंग है
0: मधुपार शांत व प्रसाद
1: प्रणाम गुण गुण मुदा मर वर गंज हर नर पर पंज
0: अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड वर नर मंड
1: मन मन प्रकाश गुण गुण प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंचीज अंग आसन अपंग उपमा
1: जल थल मंदस वस बेअंत
0: अनुपम नाथ तीर्थरास आजान बाहो एक
1: सदा कथनी नाद खाल खंड ख्याल गुरु बर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंशी जगात आजीज
1: नात अनंज बात अंठ भंडार अंठ पार
0: आठीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन बन अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत व प्रसाद
1: हर काल खल खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
1: कराना जाके कराना मन मान्य है जग जान्य है
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वासे है सर्वनाश्य है
1: विश्वंग पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है
0: ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करना कर
1: है जपा तपा तप कृता कृत अमृता अमृत है
0: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है तरनी त्रित है
1: परमेश्वर है कृता कृत अमृत अमृत
0: है अजबा कृत है अमृत अमृत है नर नायक है खल खायक है
1: नरपनायक है सर पायक है
0: पंजन है अर गंजन है रे पतापन है जप जपन है
1: सर्वाकृत करता कर हरता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जसे पचंग प्रयात छंद
1: सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज
1: रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग
1: लंकर रूपे लंकर लंके नमो आसासे नमो भंग भंके
0: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी
1: अकाल
0: दयाल अलेख पेक
1: काम का टाहा
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
1: रंगीन रूप नरेखे
0: कर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुचंग पर्यात शंद
1: समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाश्य गंजल नामे समस्तल निवासी
0: निरकामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदर्मंग
1: सदा सतदान स्त्रंग प्रणाशी करी मुल कुनिंदा समस्तल निवासी।

0: सच्ची बाणी,
1: सुनो संतो कथियो अकथ कहानी।
0: ये मन चंचला चतराई किने ना पाया,
1: ना पाया किने तू सुन मन मेरिया।
0: ये माया मोनी जिनेत परम पलाया,
1: माया ता मोनी तने कीती जन ठगौली पाईया।
0: कुर्बान कीता तिसे

नेसदन जो नानक भजाए सफल होए ते काम। जी बागुन गोबिंद भजहु करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुनरी मना।

जग रचना तै श्री रची कहु नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेताई मद माया कह अंध कहु नानक बिन हर भजन पर।

एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग भैरव करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गावै बंगली पौन असलेखी की पई बारी पैरों की पांचो नारी पंच मरगत साख सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीय माल कौंस क्या लापै संग रागनी पंचो थापै गूंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनाश्री पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खटियो फौरा नद गाई अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट स्वत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसहीरी लै पार जा संगलाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बै मंगलन सुहाई सरस बानो आहे बिनोदा गावै सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कही सवारी पुन आई दीप की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप काबू दिया गुजरी संग दीप के थाप कालंका कुंतले औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा कनरा कल्याण।

पांचो थापी सालू सारग सागर आया और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग की गोंड खो बहमीरा खस्तम मेघ राग वह गावे पांचो संग बरंगन लावे सूरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी उच्चे सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा तार हूं गज तर के दारा जबली तर नट आओ जल तार।

निमखन बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदी सुख टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु के जानम मरण दुख जा।

वेद पुराण सिमर सुध्याखर कीने राम नाम के आखर किनका एक जस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एकै दर्श दुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाऊ।

निर्मल निर्मल निर्मल ते बाणी घट घट सुनी सरण मुखयाणि पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत के निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपद संत के दुखन यार जा कटे संत के दुखन जमते ने छूटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुख नरक में भाए संत के दुखन मत होए मलिन संत के दुखन सो बाते हीन संत के तगर खिना कोए संत के दुखन तान प्रस्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतरे संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्व जन पाए संत के दुखन त्रिकत जोन किरमाए संतन के दुखन तुसनम जल संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच न जाए संदुखी का था उकनाए नानक संत पावे तो विगत पाए संतक निंदक मात ताए संतक निंदक निंदक न पाए संतक निंदक मां त्यार संतक निंदक परमेश्वर मार संतक निंदक राज तहीन संतक निंदक हुयार दीन संतक निंदक को सर्व रोग संतक निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भावे ता उसका भी होय मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का निमित संत का दुखी को डान लागे संत का दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरै संत के दुख न सुख ते टरै संत के दुखी को नहीं ठाओ नानक संत भगत ले मिलाए संत के दुखी आदमी ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी ध्यान प्रमाई संत का दुखी उजड़ पाए संत का दुखी इतना अंतर ते तो था सासन मृतक की लोता संत के दुखी जड़ छिनाए अपन भी जा पाई खाए संत के दुखी करुण राख नार नानक संत भगत ले वार संत का दुखी उमल लाए जो जल भिन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव के दिन त्रावे संत का दुखी छुटे अकेला जो वार तिलखे तमाए जो हेला संत का दुखी धर्म ते रह संत का दुख सदम चैके कीर्तन निंदका तुरही भया नानक चौथी पावे सोए थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दर गए मिल सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत दुखी न मरण जवाइए संत का दुखी पूजन आसा संत दुखी चले निरास संत के दुख न तिष्ठे कोई जैसा भावे तैसा कोई पया कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर दिसके उकरण हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की स्तुत करो दिन रात तिस त्याहो सास गिरास सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना के लभ करण हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजो से आन बसुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाय अष्टपदी मानु की टै गुरथी सब जान दे उनको एक भगवान जिस कह दिए रहे गाय बोन तिज न लागे आए मारे रखे को मानु के सुनाई हाथ तिसका हुक्म सुख होय तिसका नाम रखंड प्रोय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नानक क्यों न लागे कोय औसत मन में कर निंकार कर मन मेरे सद बेहार निर्मल सन अमृत भी सदा सो अल्लाह कर ल जियो नैनो पे ठाक घरंग सात संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे बाप जपे अरबिंद कर हर कर्म सुन हर कथा हर दर्गे नानक उजल मथा बड़ भागी ते जन जग माए सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार सेत नवंत गणी संसार मन तन मुख बलै हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी एक एक एक पहचाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने आ नानक तिने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने सूजे तिसकी जानो तिसने बूझे सा संग हर हर जस कह सर्व लोक त्योहार जन रह अन दिन कीर्तन करो ख्यान किस समय सो निर्वाण एक प्रतिजन की आसा तिहि कटे जम की फासा पारुं किस मन भोग नानक तिने लागे दोग जिसको अर्पण मन जित्या सो संसार लाने डुलावे जिस प्रावे अपना कृपा करे सो सेव को किसते डरे जैसा साता सादिष्ट अपने कार्य में समाया सो दस सो दस सो दस जिया गुरु प्रसाद ता सब जा जाव देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चल दे आवी करे आम जाम दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मय आप अंग थाप था अवनाशी नाई किस कांड धारण तार ब्रह्मांडल पे प्रता व्याप जपाय नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुभवन सकल संसार उदर मंत्र प्रभु के सेव सो उदाहरण प्रभु के सेव दूर सारण
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸੋਈ ਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਭਾਵ ਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋਏ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਸੋਏ ਕਰਨੇ ਹਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨਮ ਲਗਾਨਾ ਜੈ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਅਸ਼ਟਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਦੇ ਤੇ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖਨ ਧਨ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਰਥਾ ਜਾਨ ਨਹਾਰ ਜਾ

ब्राह्मण जो पाखान नाव चढ़ते रहे प्राणी गुरचरण लक्त निस्तार है जो अंत कर दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मनो विकास जो माओ ध्यान मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत फुटावे त्यों संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्खे काहे बिल लाई पुरु लिखे कल लिखे अपाई दुख सुख प्रभु देव नहार अवर त्याग तूत सजितार जो कुछ करे सोई सुखमान भुला कहे फिरे जहन कौन बसता तिर संग लपट रस तंग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे तीवर जाए जिस वकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजो मान लिये मन मोड़ राम नाम हृदय में तो लात खेप संता चंग चाले अवर त्याग किया जंजाल तन तन कह सब को मुख जल अर्दर कह सो पर हारे नानक ता के सद हारे चरण साधक तो और साधक अपना जियो साधक धुर करो स्नान साधु प्रजाई कुरबान सत सवड़ भागी पाई सत संगर कीर्तन गाय अनुपगंध साधु राखे हर गुण गाय अमृत चाखे उठ के संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मृत को जीवालन हार भुके को देव तधार सरण दान जा की दृष्टि माए प्रभु के का लैना पाए सब की तिसका करने जोग तिस बंधु सर हो अनहोग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब तो निर्मल करनी

अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तृण कह सुहाव आठ पैर पर वेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से धेरा सुन उपदेश हृदय वसाव मानिसे नाम खुल पाव हल फल दुल सुहा राम नाम त्रुटार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन विषय ते सच प्रख्या मन तन नाम च फोड़े लाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच वपार करो पारी दरग निवेखे तुम्हारी काटे रखो माए नानक पौर न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जब रखना हर त्याय निर्पोज पै सगल भमड़े प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचने हार सिरू पुर ठाडा गुरसूरा नानकता के कारज पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हरूप धन सेवा से पुराण अंतर जामी प्रफुरदा जिस मन से सोत निहाल ताके निक निहाल विखाल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन पर गाष्टपदी संत संगंत प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री है कसकट माए रंग नाल कणक रंग आनंद स्टाए नौ प्रभु का नाम दे मैं इसका विश्राम सुन समाधन तैनात कहना चाचर विस्मा तीन देखे से आप दिखाए नानक तीजन सो जी माए सो अंतर सो बाहर अंत कड़कड़ ब्या प्रया भगवंत तरण मय आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण पुरतपाल बंतन पर्वत है पारुण जैसा गया तैसा करम पौन पानी बैसंतर माए चार कुण दैदि समाए तिस्ते पे नहीं कोठा गुरु प्रसाद नानक सुपाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सचेर सुरन कतर मायक बाणी प्रभ के सब को बोले आप डोल न कहूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाए गुण है मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत हरे हो स्वामी ज्योत पोल गुरु प्रसाद प्रभु का नास नानक तिन में विश्वास संत जना का बेखन सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता दिसके रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो हो सो जुकमाने करण करावन हर प्रभु जाने अंतर बसे बार पी हो नानक दर्शन दे सम हो आप सत किया सब सत इस प्रभु ते सगले उत्पत तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार कला लखिया जाए जिस भाव तिले मिलाए कम नुकुन गई दूर आपे आप प्रभु अंतर गज आप जनाए नानक तिस जाने आप हो जाए सर्वभूत आवरतार सर्व नैण पेखन हर सगल समग्री जाका तन या पंजसा भी सुना आवन जानी खेल बनाया क्या कारी की नीम आया सबके मदड़ पितोरा जो कुछ कहना सो आपे क्या वे आके जाए नानक जा पावे तां ले समाए इससे हो सुना ही बुरा और कहो किने कछ करा भला कर दो धनी की आपे जाने अपनी जी की आप साज धारी सब सा जो पोते अपन संग्रात ताकि कदमत कही न जाए दूसर होए तसूजी पाए तिसका किया सब प्रवाहन गुर प्रसाद नान खे जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति हृदय भगवान धन धन धन जने आए जिस प्रसाद सब जगत रह जने आवन कै सो आव जन के संग जिते आवे नाव आप मुकत मुकत करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे कै गुण गाओ अष्टपद पूरे गुरु का सुन उपदेश पार प्रभे सा सा सिमरो गोविंद मन त्रिगुत्र चंदासन अंत्या गोत्रंग संजना की तुरमण मांग आप छोड़ बेनती करो सा संग अग्नि सागर तरो हरतन की परले भंडार नानक गुरु पुरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद सासंग भाई परमानंद नरक निवार उधारो जियो कुण को मृतरस पियो चितो नारायण एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का दार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल यतन सुमत कुमार उदार आप तरह लोक ने सार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय सौतनात वाज सुन सुनंद करे प्रभु गाजे प्रगट गोपाल मत के माथे नानक तुरन के साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर पै सब रेण अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण हो सेव की से आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी के बीमारी प्रभु की सो प्रसन्न भी सावधानी का करचीत
सुखमणि सहज गुण गुण नाम जिस मन बसे सो निधान सर्विचाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख सब होए सब तुझ पाए स्थान वरुण आवे हो जान जाना अर्दन कर चले सोए नानक से प्राप्त होए खेम शांत रिद नाम निध बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ तुम स्नान चार पदार्थ कमल होगा सब के मत सब तुधा समुद्र चतुर तत्व कत कवेता समदृष्टि एक दृष्टिता ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਣ ਕੇ ਮੁਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ ਨਿਧਾਨ ਜਪੇ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤਰ ਵੇ ਦੁਖਾਣੀ ਸਗ ਮਤਾਂਤ ਕੇ ਲੋਗ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਤ ਕੇ ਮਨ ਸਰਾਮ ਕੋਟ ਬਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਸੁਣ ਲਾਏ ਪਰੇ ਤਿਸ ਜਣ ਹਰ ਪਵਚੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ ਨਿਰਮ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮੈ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਣੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਊਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਹਿ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸੇ ਕੀ ਗਤੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ